ते स्तुति सद्य परापरोक्ति स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वंस्तुता सुतये कावा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दी